संगत गुण प्रकाश। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नी आए, त्रिग जीपै त्रिग जी पास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिर्जन नानक ना प्रगासरा। गुजरी महला पनमा, काहे रे मन चित पै उद्दम। जा आ हर हर जीव परिया, सर पत्थर मैं जन त्यो पाए। ताका रिजक आगे कर तरिया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गौर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट रहा। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी धरिया। सिर से रिजक संबाहे ठाकर, काहे मन पोखरिया। कूडे ऊड आवै सह कुसात, पाछे बचरे शरिया। तन कवन खलापै कवन चकापै, मन में सिमरन करिया। साबन दान दस अष्ट स्थान, ठाकुर कर तर धरिया। जन नानक बाल पाल सद पर जाइय, तीरा अंत न पारा बरिया। राग यासा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम पारा।

हर ते आभूषण तो दे सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट कट अंतर सर्प निरंतर जी हरि को पुरख समाना। एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज बढ़ाना।

सब तेरी तू सब नीत हया जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माय तुझ बिन दूजा कोई नाय जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजो के मेल जिसनु तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सधे आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सो पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तद बिन दूजा अवर न कोए तू कार कार विख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आस महला पहला तित सार वरड़े पहले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पग नहीं चाले।

ना हो जती सती नी पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पिया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजमा, पही प्राप्त मानुख ते हुरिया। को फिर मिरन के तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम। मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंजाम लग भव जड़ तन कै। जन्म वृथा जात रंग माया के रहाउ।

शर्मा शरण परे के राखो शर्मा कभी उपार पिंती चौपाई हमरी करो हादर चा पूर्ण होए चित की चा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रदपारा हमरे दुष्ट सब तुम काबू आप हाथ दे मुहे बचाव सुखी बसे मोर परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब पैरन कुआ संघरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम है शाड कोई अब न त्याहूं जो पर चाहूं सतुं ते पाम सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्र हमारे मारी है आप हार दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास सनवरी है जो सदा हमारे पछा श्री अस तुज जू करिहु रचा राख रिओ मोय राखण हारी साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिव जू अवतरा कार पाए कार विशन प्रकाशा सकल कार का किया तमासा जवन कार जोगी शव कियो पेद राय ब्रह्मा ज्योतियो जवन कार सबलू सवारा नमस्कार है ताहि मारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सब गुण सदियो सतरन को पलमो बदकियो घट घट के

दृष्ट कर पूरला। संतन दुपाए ते दुखे, सुख पाए साधन के सुखे। एक एक के पीर पछानै, काट काट के पट पट की जानै। जबुद कर करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह पारा। जब यह करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मृत देह तरसब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब हित रहत निरालम, जानत वेद भेदर आलम।

ताको कर पाहन अनुमानत महाभूड़ कर भेदन जानत महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चिंतन भव आप अपनी बुद्ध है जेते बारणत भिन्न भिन्न तू है तेते तुमरा रखन जाय पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव के भूपा अंड जेर से तिनी उत भुज खान बहुर रजदीनी कहूँ फुर राजा वह बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकाठा सगरी सिरठ दुखाय अचंभव आद जुकाद शुरू से अंभव अवर इच्छा मेरी तुम करो सिख उपार सिख संगरो दुष्ट जिते अठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जुन परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे जो काल को एक बार त्याए हैं ताके काल निकट नह अहै रक्षा हुए तय सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होए दुष्ट शाह स्व सके न कोई एक बार जंत में सुबारा काल फांते ताहि उपारा

भैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते कौआ खतरे निया नियो। राम रही पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र बेस पै बोपीत कहे हम एक न जान्यो। सिरिय सपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सा तो हे बखाने दोहरा।

राम करी महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद पिया मेरी माय, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तै पाया, सह सेती मन वजिया बधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आईया, शब्द तां गावो हरि केरा, मन चनी वसाया। कहे नानक नंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा, कार्ज सब सवारना।

निरोल कीर्तन उपरांत सोदा रस साहब जी दे पाठ हुए हैं। आप जी दे बच्चियां कोलों आप जी दी लाही पाणी दे पाठ करदे आ, कीर्तन करदे आ, बेअंत भुल्लां चुक्कां हो जांदियां अणजाण।

मन वस्तु तादुर मत दोय। मन मन गुर तेक होए निर्गुण राम गुणा वस होए। आपने वार बिचारे सोए रहाओ मन भूलो बचते विकार। मन भूलो सिरे आवे पार। मन मन हर कंकार। मन भूलो माया कर जाए काम विरुद्ध रहे नठाए। हर पज प्राणी रसन रसाए गैवर हैवर कंचन सुत नारी। बहु चिंता पिड़ चाले हारी जुए खेलन काची सारी। संपौ संची पे विकार हरख सोक उभे दरबार। सुख सहजे जापरित मुरार नदर करे ता मेल मिलाए। गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नाम सब दुख निवास मन मुख मूड माया चितवास। गुरमुख ज्ञान तुर करम लिखियास। मन चंचल तावत फुणतावे साचे सूचे मेल न पावे। नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वारे री महला पहला। हमें करत्या न सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए। सकल विगुते पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुवारी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहा। आदिष्ट दिसै ता कहे आ जाए बिन देखे कहना बिरथा जाए। गुरमुख दिसे सह सुभाए सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत दुखागल होए सकल विकारी हार परोए। एक बिना झूठे मुक्त न होए कर कर करता देखे सोए। तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुभाए। गुरमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए। तन मैं साचो गुरमुख भाओ नाम बिना नाहि निज ठाओ। प्रेम परायण प्रीतम राओ नदर करे ता बूझे नाओ। माया मो सर्व जंजाला मन मुख कुचील कुशित बिकराला। सतगुर सेवे चूके जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला। गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज कर वसै साच समाए। जमन मरना ठाकर हाए पूरे गुर ते ए मत पाए। कथनी कथो न आवे और गुर पुछ देखिया ना ही दर होर। दुख सुख पान तसै रजाए नानक नीच कहे लिवलाए। गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चितवास। काम क्रोध अंकार विनास दूजा कौन कहा नहीं कोई। समय एक निरंजन सोई राव दूजी दुर्मत आखे दोए। आवे जाए मर दूजा होए तरण गगन न देखो दोए। नारी पुरख सबाई लोए राव सस देखो दीप कुछ आला। सब निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया। सतगुर मुखो एक बुझाया एक निरंजन गुरमुख जाता। दूजा मार शब्द पछाता
एको हुकम वर्तै सब लोई, एकस ते सबयो पत होई। राधो मैं खसम एको जान, गुर कै शब्द हुकम पशान। सगल रूप वर्णवन माही, को नानक के कुशाला कौड़ी महला पहला। अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त भेद क्या जाने काचा। ऐसा जोगी जुगत बिचारे, पंचमार साची उरतारे रहाओ। जिसके अंतर साच वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे। राव सा से को गरे उदयन, करनी कीर्त कर्म समाने। एक शब्द एक भिखिया मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे। पैर रच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए। आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। गुरु की सेवा शब्द विचार, हो मैं मारे करनी सार। जाप तप संजम पाठ पुराण, को नानक ये परम परमान। गौड़ी महला पहला। खिमा गही ब्रात सील संतोखं, रोग न व्यापे ना जम दुखं। मुक्त पे प्रभ रूप न रेखं, जोगी को कैसा डर होए। रूख बिरख गिरे बार सोए रहाओ। निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंतन जागे सच लिवलावे। सो जोगी मेरे मन पावे। काल जाल ब्राह्मी अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्भ निवारे। आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए। पैर अच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए। नार ने केवल निरपो नाओ, अनाथा नाथ करे बल जाओ। पुनराप जन्म नाही गुण गाओ। अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्द आप पछाने। साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा। आवे ना जावे चूके आसा, गुर कै शब्द कमल परगाशा। जो दिसै सुवास निरासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा। नानक बिरले मिले उदासा, गौड़ी महला पहला। ऐसो दास मिले सुखोई, दुख विसरे पावे सच सोई। दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरना धूरी रहाओ। नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जिह्वा सूची हर रस सारा। साज करनी अभ्यंतर सेवा, मंत्र तस्या लाख अपेवा। जा जा देखो ता ता साचा, बिन बूझे झगड़त जाग काचा। गुर समझावे सूझी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई। कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पै बेताले। गुरु के आय वरनी दूजा, किसको दे करो मन पूजा। संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तत बिचारे। साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक अमता के दास। गौड़ी महला पहला। ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया। जय ब्रह्म सिंह रे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसारे। जित गुर मिले सो पार उतारे, ऐसा गर्भ बुरा संसारे। जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारे रहाओ।
बाल राजा माया अहंकारी जगन करे भारे फारी बिन गुर पूछे जाए पयारी। हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत न पाए अपीवे आप फुलाए आपे मत देवे। दुर्मत हरनाकश दुराचारी प्रभु नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद उधारे कृपा तारी। भूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका सी समेत गर्भ गया बिनस्त गुरहेत। सहस बाह मद कीट में खासा हर नाकश ले नखे बिदासा दैत संगारे बिन भगत व्यासा। जरासंद काल जमन संघारे रक्त बीज काल ने बिदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे गुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे। बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जानिया करता सोई जिनको दुख पचै दुख होई। जन में जय गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावे परम फुलानिया एक तिल भूले बौर पछतानिया। कंस केस चांडूर ना कोई राम ना चीने आए अपनी पत खोई बिन जगदीश न रखे कोई। बिन गुर गर्भ ना मिटया जाए गुरमत धर्म तीर जहर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला। चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पैर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो। क्या पहरों क्या ओट दिखावो बिन जगदीश कहां सुख पावो। रहाओ कानी कुंडल कल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला। बिन जगदीश कहां सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी। खोड़ श्रृंगार करे अत प्यारी बिन जगदीश भजै नित खुआरी। दर कर महला सेज सुखाली एनस फूल बिछावे माली बिन हर नाम सुदे दुखाली। हैवर गैवर नेजे वाजे लश्कर ने बखवासी पाजे बिन जगदीश झूठे दिवाजे। सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो ताज कुला सिर छत्र बनावो बिन जगदीश कहां सच पावो। खान मलूक कहावो राजा अभी तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सवर सकाजा। हमें ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास। हमें ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जान्या हृदय मुरारी प्रणत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला। सेवा एक न जान सेवरे प्रपंच ब्याद त्याग कवरे पाए मिले सच सच सच रे। ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिले मल धोई। रहाओ ऊंधो कवल सकल संसार दुर्मत अगन जगत पर जा रहे। सोय उपर गुर शब्द बिचारे प्रेंग पतंग कुंचरियर मीना मृग मरे शय अपना कीना तृष्णा राज तत् ने बिना। काम चित कामन हितकारी क्रोध बिना से सकल विकारी पात मत खोवे नाम विसारी।
ਪਰ ਘਰ ਚੀਤ ਮਨਮੁਖ ਡੋਲਾਏ, ਗਲ ਜੇਵਰੀ ਧੰਦੇ ਲਪਟਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟ ਸਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਉਂ ਤਨ ਵਿਧਵਾ ਪਰ ਕੋ ਦੇਈ, ਕਾਮ ਦਾਮ ਚਿਤ ਪਰ ਵਸ ਸੇਈ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਕਬਹੁ ਹੋਈ। ਪੜ ਪੜ ਪੋਥੀ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਪਾਠਾ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜੈ ਸੁਨਥਾਟਾ, ਬਿਨ ਰਸਰਾਤੇ ਮਨ ਬਉ ਨਾਟਾ, ਜਿਉਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਸਾ, ਜਿਉਂ ਮੀਨਾ ਜਲ ਮਾਹਿਉ ਉਲਾਸਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਾ, ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੱਠ ਕਰ ਮਰੈ ਨਾ ਲਿਖੈ ਪਾਵੈ, ਵਿਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਸਮ ਲਗਾਵੈ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੈ।

चुवा चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम बिसारे सब कूड़ो कूर। नेजे बाजे तखत सलाम, अदकी तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही ब्रह्मेला, मन दे पावे नाम सुहेला। दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहत सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे घाटे घाट गाट।

राम नाम चेतरा पैजा का उपजंप दर्शन की जयता का राम ना जप भाग तुम्हारा जुग जुग दाता प्रभु राम हमारा रहाओ। गुरमत राम जपै जन पूरा तित काट अन हत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभु राखे कृपा तार जाके हृदय हर हर सोई तिनका दर्श पर सुख होई। सर्ब जिया मैं को रवै मन मुख अंकारी फिर चूनी पवै सो बुझे जोस्त गुर पाए हमें मारे गुर शब्दे पाए। अर्द उर्द की संद क्यों जाने गुरमुख संद मिले मन माने हम पापी निर्गुण को गुण करिए प्रभु दयाल नानक जंतरिये। गौड़ी बैरागण माला पहला को अंकार उस्त गुरु प्रसाद ज्यो गाई को गोयली रख कर सारा एन सपाल रख ले आत्म सुख तारा। ए त्योत राखो दीन दयाला तो शरणागत नदर निहाला रहाओ जै देखो तै राव रहे रख रख नहारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण आधारा। किरत पया आदि उर्दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सेना दियारा। जग बिनसत हम देखिया लोभे अंकारा गुर सेवा प्रपाया सच मुकत द्वारा। निज कर महल अपार को परंपर सोई बिन शब्द तिर को नहीं बूझे सुखोई क्या ले आया ले जाए क्या फासे जमजाला। डोल बदा कस जेवरी आकाश पाताल गुरमत नाम न विसर सहजी पत पाइये अंतर शब्द निधान है मिले आप गवाइये।

La bella गुर प्रसादी पूज ले तो होए न बेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। बिन गुर शब्द न छूटी है देखो विचारा, जे लाख कर्म कमावे बिन गुर अंधियारा रहाओ। अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कहिए, बिन गुर पंथ न सूझई केत बेद निर्भय। खोटे को खरा कहे खरे सार ना जाने, अंधे का नाओ पारखू कली काल विडाने। सूते को जागत कहे जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे मुए नहीं रोता। आवत को जाता कहे जाते को आया, पर की को अपनी कहे अपनों नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कहे कड़वे को मीठा, राते की निंदा करे ऐसा कल में डिठा। चेरी की सेवा करें ठाकुर नी दिसे, पोखर नीर बिरोलिये माखन नी रिसे। इस पद जो अर्थाय ले सो गुरु हमारा, नानक चीने आपको सो अपरे पारा। सबे आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुरु कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, अष्टपदियां एक ओंकार अस्तु गुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे फूलो आवो जाओ। मन मुख सूतक कभे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर के नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माए, सूतक भोजन जेता किछ खाए। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। छास्त सिमरत सो देखो कोए, बिन नामे को मुक्त न होए। जोग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतर सपार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे समाए। गौड़ी मान लाती जा गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जीव राखो हृदय उतारा। गुरमुख शोभा सच द्वारा, पंडित हार पाड़ो तजो विकारा। गुरमुख पव जल उतरो पारा रहाओ। गुरमुख विचों हमें जाए, गुरमुख मैल न लग आए। गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन पर बुद्ध बूझो सोई, लोक समझावो सुनो इन सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुख होई, मन मुख डंभ बहुत चतराई। जो किश कमावे सो ताए न पाई।

जम पकड़िया तभी पछताना। बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुर दाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पात नामे वड्याई, सायर की पुत्री बिदार गवाई। नानक बिन नामे झूठी चतुराई, गौड़ी महला तीजा। इस जुग का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सोची पाई। एथे अगे हर नाम सखाई, राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहा। वाद विरोध न पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर कै शब्द सच लिव लाए। हमें मैला ए संसारा, ने तीर्थ नावे न जाए अंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सोजन साचा जे हमें मारे, गुर कै शब्द पंच संगारे। आप तरे सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मन मुख अंदर हे लपटाए। गुरमुखिया लिपत रहे लिवलाई, बोते पेख करे पेख तारी, अंतर तिशना फिरे अंकारी, आपना चीने बाजी हारी। कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह मद परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, गृही अंतर साच रिव लागी। नानक सतगुर से वह से वडपागी, गौड़ी मान ला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद व्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा। त्रैगुण भरमे नाहि निज कर वासा, हमार राके सतगुरु मिलाया, अंदन भगत तरनाम दृढ़ाया रहाओ। त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद बखाने सिर मारे जमकाला। तत न जीने बन्ने पंड पराला, मन मुख ज्ञान कुमार्ग पाए। हर नाम बिसारे अबो कर्म दृढ़ाए, भवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, बिख्या राता बहुत दुख पावे। जमकागल जीवड़ा नित काल संतावे, गुरमुख जमकाल नेड़ ना आवे। होमे दूजा शब्द चलावे, नामे राते हर गुण गावे। माया दासी भगता की कार कमावे, चरणी लागे ता महल पावे। सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुने से तन वंत दिसें। जोग माही तिन को सब निवै, अंतन पूज कराई। सहजे गुण रवै साचे मन माई, पूरे सतगुर शब्द सुनाया। त्रैगुण मेटे चौथे चित लाया, नानक होमै मार ब्रह्म मिलाया। पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रैगुण मेटे चौथे चित लाया। नानक हमें मार ब्रह्म मिलाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सतसंगी जी नूं वडपा गए जिथे आप जीआं ने। लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ ते राही पावन बाणी दा आनंद माणिया। समा है शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन दा। सेवा निभाउणगे भाई परमिंदर सिंह जी लुधियाणे वाले। आओ तिन्हां दे जत्थे पासों पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

0: ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरति अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नार श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की तुनी सलोक महला पहला बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा
1: जे सौ चंदा उगव है सूर चढ़े हजार

बड़ी अपने आप साजो अपने रचियो नाऊ दोही कुदरत साजिए करा सिंडी ठो चाओ दाता करता आप तू तुझ देवे करे पसाओ तू जाने सबसे दिल सह जिंद कवाओ करिया सिंडी ठो चाओ करिया सुनो इंडी ठो चाओ।

जिन करतै करणा किया चिंता पे करणी तासो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुआरी स्वस्थ तिस तिस दी बण पग।

श्री जगत गुसाई। नील वस्त्र पैरव प्रवाण मिले स्थान ले पूजे प्राण पख का कुठ वकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जाना देखे चौंका गड्डी कार ऊपर बैठे कुड़े यार मत बटे वे मत बटे हुआ न साडा फिटे तन फिटे फेड़ करें मन जू

शरण जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

तन्मय गुरु सब जी, तन्मय गुरु साहिब जी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो।

जय मृळकंत पिशाणा। वाहिगुरु जी, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ। तिस रूप नरेख अनाहद वाजे, शब्द निरंजन किया। करे वखियान जाने जे कोई,

निर्म चीत नानक ना खुदाए का दिल लच्छे मुखले ओ और दवाए दुनी के चुट्टे अमल करियो महला पहला जाहो नाही ता क्या खाओ क्यों नाही क्या होवा इता करना क्या कथना भरया पर तू वहां अपन उजालो को जाए ऐसा गुहुआ नान गंदा हुए के सहराए सब समाए व्याथे अगे मैं मुंह पाए सुवे सगु जापे पौड़ी मारुति सब तू कड़ी मूर्त विचारा तू गंदे कि न पायो सची अल पर पड़े मूर्ख किस लाभ लो अहंकारा नाउ पढ़िए ना बुझे गुरमति विचारा गुरमति नाम तन कटिया भक्ति परे भंडारा निर्मना मना ना बसिया दस सचे सचियारा जिदा जीव प्राण है अंतर जोत अपारा सच्चा साओ एक तू जगत बंजारा सलूक महला पहला मेर मसीत सिद्क मुसला हक को हला कुरान सारो सनत सिरो जाहो मुसलमान कणी कावो सच पीर कर्म कर्म कौन वात असी जात भाव सी नानक रखे लाज महला पहला हक पराया नानका सुर सुगाए गुर पीर हमा ता परे जा मुरदार न खाए बेली बेत न जाइए झूठे सच कमाए मारनो पै हराम होए मैं होए हलाल न जाए नान गली कूड़िया कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज नवा जा वक्त पंज पंजी पंजा नाओ पहला सच हलाल दूजा तीज दोए तीजा खैर खुदाए चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफ सुनाए कानी कलमा आख कै ता मुसलमान सुधाए नानक जेते कुड़ियार कूड़े कूड़ी पाए पौड़ी एक रतन पार्थ बन दे एक कच्चे दीव पारा सतगुरु उठे पाए अंदर तमंडारा बिन गुर किने नल दे भुकमुए कुड़ियार मानक दूजे पच मुए ना बूझे बेचारा एक सभा जो दूजा को नहीं किस वगे कई पुकारा एक निर्दन सदा भौंक दे एक ना तेरे परे तुजारा मिनावे होर तन ना ही होर विख्या सुचारा नान करा ए करे आकम सवार नारा महला सलूक महला पहला मुसलमान कहावे मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर बैठा मिठा मस्कर मना माल समावे हो मुस्लिम दीन महाने मन जीवन का परम जगावे रब गिर जाए मने सिर ऊपर करता मन आप गवावे तो नानक सर जिया मैं रमत हुए ता मुसलमान कहावे महला पहला पर काम करो झूठ निंदा तज माया तब मान प्रीत सुधारा तज मान मान प्रीत सुधारा तय प्यास आस राम लिबलावे नान सच्चा मन से सच साबित हर नाम समावे पौड़ी राजे रहित सिदार कोई ना रहस्यो हट बड़न बाजार हुकमिट हसियो बक्के बंकतवार मूर्ख जाने अपने दर परे पंडारी ते खने ताजी रतु खार वाथे पाखरे पाग मिलख बकर बार किसे से अपने तंबू पलंग नवार सराई चे लालती नान सच दता सनागत कुदरती सलूक महला पहला नदिया हुए तेन वाह सुंद सुम होए दुर्कियो सबली ताती सकरो खुशी करे न जियो पावे सुना रूपा होए हीरे लाल जड़ाओ ई तुआ सलाना खेलै न चाहो महला पहला पार अठारह मेवा हुए गढ़ होए सुवाओ चांद सूज दोए फिर दे रखे न चलो वे थाओ पीतो सालाना अखन ले न चो महला पहला जे देहे दुख लाई है पाव गुरो दोहराओ रद पीने राजे सिरे ऊपर रखिए में जापे पाओ पीतो सालाना अख ले न चो महला पहला अग्गी वाला कपड़ होवे खाना होवे वाओ सुनवे दिया मोहनिया स्त्रिया हो बना नानक सब हो जाओ पी तू है सलाना अखन ले न जाओ पावड़ी बदली बैगना खसम ना जानी सुकी दीवाना अपना पछाणी कले बुरी संसार व देख पिए बिना बेकार पर मैं बची है रो एक जाने सोई सिसी कुफुआ खुबराने पाया दे जसी सब दुनिया सुबान समाई है सिजे दा दीवान वा गुमाई महला पहला सलोक सोच

होगा। गुण एहो होर नाही कोए, ना को हुआ ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कमजात, नानक नावै बाज सनात। राह गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगाश। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगाश, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वडभाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिलै त्रिपतासै, मिल संगत गुण प्रगाश, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हरस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगाश। राह गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवें उदम, जा आहर हर जियो परेया,